फिर अगर ये लोग तुमको झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुठलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-88-5569।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी

0: रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
0: सुपर वाइट।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल

0: सभु आहिनि।
1: हाणे अचो महिरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
0: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204।

0: एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
3: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

ETH Network, सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network, सिंध की आवाज।

गुलशन हदीद वेझो फलकनार सोसाइटी जे हिक घर मां हिक ई कुटुंब जे पंज भातियुनि जा लाश थाया आहिनि। फोतियुनि में घर धणी शाहज़ेब, संदस ज़ाल सबा, भेण शुमायला, मासूम बारड़ा आर्या आयज़न शामिल आहिनि। पुलिस जो चवण आहे त ॿिन्ही बारनि ऐं नारी शुमायला खे ज़हर ॾेई मारण बाद घर धणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाजो अंदरां बंद थियल हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त घर धणी शाहज़ेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो हो। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी खां तफ़सीली रिपोर्ट तलब करे वरिती।

सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग पार्लियामेंट्री पार्टियुनि जा इजलास सॾाए वरिता। पीटीआई जी पार्लियामेंट्री पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नू लीग पार्लियामेंट्रीज़ खे केवीके जी सूरतहाल ऐं ख़ैल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एतिजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।

आहे त शहरी दहशतगर्दीअ खां आजबो चाहिनि था। उन्हनि जो ख़्याल हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बाहियूं ॾींदा। समूरो सूबो पुरमन आहे। 24 कलाकनि दौरान सूरतहाल खे संभालियो। KPK हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी। सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा ऐं नासिर अब्बास सां मुलाकात। KPK में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां

0: स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर व्हाइट की। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर व्हाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर व्हाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर व्हाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर व्हाइट।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट

0: करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: खुश और बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट था डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावर जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावर जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह डहें खां शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 03016196851।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 03013803847 आई गुलाम अब्बास दहर 03014476927।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: शनादीद वे जो फलक ना सुसाके जे एक घर मा एक ही कुटुंब जे पंज घर बातन जा लाश हथ फोतन में घर धणी शाहजेब संदा जाल सबा ए भेण शुमाइला मासूम बाड़ा आर्या ए आयरन शामिल पुलिस जो चवणा आए त बिनी बारन ए नारन शुमाइला के जहर डई मारन बाद घर धणी शाहजेब जाल के कतल कण बाद आपघात कयो आए घर जो दरवाजो अंदरा बंद थियल हो इलाके वासन बुधायो आए त घर धणी शाहजेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो आईजी सिंध जावेद आलम ओढो वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी ईस्ट खां तफ़सीली रिपोर्ट तलब करे वरती।

0: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं 14 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। हादसे सब 5 मुसाफिर फोती विया, केतरा ई जख्मी थी पिया। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ। रेस्क्यू अमले 13 बोगियूं क्लियर करार डेई छड्यूं। एक बोगी कटे फाथल मुसाफिरन के बाहर कढ़ियो वञे थो। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची खां पिशावर वञी रही हुई त शेरशाह पुल वट हादसे जो शिकार थी वही। रेलवे खाते पारा हादसे में 5 मुसाफिरन जे फोत थियण जी तस्दीक। रेलवे इख़्तियारनि जो चवण आहे त हादसे वारे हंध तां बोगियूं हटाए ट्रेक बहाल कराइण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते डुख जो इज़हार कयो वियो। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत।
1: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पार्लियामेंट पार्टीअ जा इजलास हलाए वरिता। पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी। पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंटनि खे केपीअ जी सूरत हाल ऐं खयल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी। पीटीआई पारां एहतजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।
0: ऐं फेज़गंज वेझो वियो आहे खे 24 कलाकनि दौरान 20 फुटनि जो वधीक हिकु घारो। फसल पाणी हेठि अची विया। गुज़िरियल ॾींहुं पहल घारे खां थोरो अॻियां RD 78 वटि वधीक 20 फुट खां मथे घारो पियो। घारे सबबि वणनि ऐं कंध समेत ॿिया फसल पाणी हेठि अची विया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मुअसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-335-569, 0300-338-5569।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
8: Super White. इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0302018-00003।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
9: न अदा?
11: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगल डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
12: 0301-399-2836।
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: करती हो। मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है। स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम, और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
0: सुपर वाइट।
2: चोएतालीह साल जो तजुर्बो, हजारें मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, डी एच

चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम वाशिंगटन रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सुखी जी जहां भी मौजूद हैं, बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आपको पता चलता है कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। तो खूबसूरती की सारी बातें हम आगे चल के करेंगे और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वक्त 11:16 हुए जाते हैं, पाकिस्तान का म्यारी वक्त तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो लोग इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबल खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

आगे जो ब्यूटीफुल शाम और शाम के साथ साथ आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. सो सुपर वाइप प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जिसके बारे में हम आपको बताएंगे. सो सुपर वाइप प्रोडक्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सबसे पहले इसका हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट डाउन करें सो दैट जो लोग डेली बेसिस पर प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम सुनने के बाद ना प्रोडक्ट्स को लेने गए हैं और प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लें सो दैट आप अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवा सके इन प्रोडक्ट्स को. तो हेल्पलाइन नंबर है जी सखर और लालखाना वालों के लिए स्पेशली 03147544462 03147544462. ठीक है, इसके ऊपर कॉल करेंगे सखर और लालखाना वाले. इसके अलावा जी मुमताज हसन खान से आप रابطہ कर सकते हैं जितने भी हैदराबाद के रहने वाले हैं और प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाना चाहते हैं वहां पे मिल नहीं रहे हैं अगर. सो उनका हेल्पलाइन नंबर है 03702568321. ठीक है, तो मुमताज हसन खान जो कि हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है और आप इनको रابطہ कर सकते हैं हैदराबाद वाले जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं. सो वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए 03702568321. ठीक है, सॉरी हैदराबाद वाले.

आप हमें बता रही थी, और हो सकता है कि आप जब इसको यूज कर लें तो यूज करने के बाद इससे भी कई ज्यादा आपको अच्छे सॉन्ग है वो हम प्ले करने जा रहे हैं और प्ले कर भी दिया है। इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एक्सक्रस मेडिक्स।

0: 94851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे ऐ चामर जो खूबियों जल्द में फाइन लाइन्स एंड झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई।
0: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

जिसके बारे में हम बात करेंगे. आप लोग मुझे कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं. तो ये सब कुछ आप लोग मुझे कर सकते हैं. तो कॉल्स करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने टेलीफोन लाइन जो ओपन कर दी है जी 03000113488 और साथ साथ सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों के हेल्पलाइन नंबर भी आपसे शेयर करती जाऊंगी. सो डैट आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए, आप इजीली उस पर कॉल कर सकें. ठीक है, इजीली कॉल करके आप उन पे जो है या मतलब एटलीस्ट आप कॉल जरूर करें अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मालूम चाहिए हो, प्रोडक्ट के बारे में कोई मालूम चाहिए हो या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मालूम चाहिए हो कि यहाँ मिल रही है, वहाँ नहीं मिल रही, कहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, तो इस तरह की मालूम कोई भी सखर और लाड़खाना वाले डायल करेंगे 03147544622. स्लोली बताऊंगी 03147544622 सखर और लाड़खाना वालों के लिए. ठीक है, अब हैदराबाद वालों के लिए मुमताज हसन खान का नंबर है 03705688321. ठीक है, 03705688321.

ओके, इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे एंड सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्सकस मैडम. सुपर वाइट प्रोडक्ट्स जो के सुपर से भी ऊपर हैं और आपकी ब्यूटी को भी सुपर से ऊपर लेके जाएंगे. बेफिक्र हो जाएं और सुपर से ऊपर लेके जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करने पड़ेंगे. एंड देन जब आप इनको बाय कर लेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं और कितने ही ज्यादा हसीन हैं. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें से ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और उसके साथ ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तमाम उन लोगों के लिए जिसकी स्किन टाइप है ऑयली और ऑयल को जो है वो फेस कर रहे होते हैं. गर्मियां गुजार ली हैं, उसके साथ सर्दियां आ रही हैं, फेस कभी भी फ्रेश नहीं दिखता है आपके जो एक्सेसिव ऑयल होता है फेस का, उसकी वजह से होता यह है कि फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है और फेस के ऊपर जब ऑयल आता है तो फेस कभी भी फ्रेश नहीं लगता. आप उस चाहे उसको जितना धो लें थोड़ी देर बाद आपका फेस ऑयली हो ही जाता है. ठीक है, तो अगर फेस को फ्रेश दिखाना चाहते हैं तो सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ये जरूर यूज करना है. ठीक है, तो ये चीज है. तो सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, जिनमें जितने भी बार फेस को वॉश करें आपने, सिर्फ और सिर्फ सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से ही करना है. और जब आप रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले एक दफा फिर से फेस वॉश करने के बाद सुपर वाइट वालों की सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम आप लोगों ने अप्लाई करनी है. अप्लाई करने के बाद आप लोग देखेंगे कि खूबसूरती कितनी ज्यादा है आपके पास और पहले ही तीन दिन में आप वाजिब रिजल्ट देखेंगे. डाउन कॉम्प्लेक्शन है फेयर हो जाएगा, एक्नी है खत्म होने लगेगी, एक्नी के निशान हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं, चैनिंग है, सब चला जाएगा. ठीक है, विजिबल रिजल्ट देखने के लिए तीन दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और पहले ही हफ्ते में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा. तो इस रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल क्रीम को. और ये क्रीम जो है ना आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनके फेस पे ये बहुत ज्यादा इश्यू रहता है. और यही वजह होती है कि जो आपका फेस है वो कभी भी फ्रेश नहीं दिखता. वही बात आ जाती है वहीं पे. सो अगर इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट को और भी ज्यादा इन्हेंस करने के लिए सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर वो ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, किसमें ऐड करेंगे? ब्यूटी क्रीम में. सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करेंगे. अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. जब दोनों चीजें यकजा हो जाएंगी तो उसको स्टोर कर लेंगे. रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे. ठीक है, डबल ट्रिपल और उससे भी कई ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. और मजे की बात आपको बताऊं, अच्छा मजे की बात यह है कि जो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर है ना, तो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर जो आप लोग अपनी ब्यूटी क्रीम्स में ऐड कर सकते हैं, आप लोग अपने फेशियल्स में ऐड कर सकते हैं इसको, आप लोग अपनी ब्लीच क्रीम में ऐड कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. सारा नहीं मिक्स करना, जब आप फेशियल कर रहे हो ना तो उसके हर स्टेप में एक से दो पिंच यानी कि एक से दो चुटकी आप लोगों ने हर स्टेप में ऐड करनी है. ठीक है, हर स्टेप में कैसे ऐड करेंगे? लाइक अगर आप क्लिंजिंग कर रहे हैं, क्लिंजिंग करते हुए जो क्वांटिटी आप अपने फेस के ऊपर लगाते हैं क्लिंजर की, उसमें आप लोगों ने एक चुटकी ब्यूटी सीरम बूस्टर को ऐड कर लेना है. ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी. और सेम फिर उसके बाद जब स्क्रबिंग का जो वो है स्टेप है वो आता है तो आप लोगों ने फिर उसके अंदर एक पिंच दोबारा ऐड कर देनी, यानी कि आप इसको हर स्टेप में ऐड करके अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं. साथ अगर आप ब्लीच क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट को दुगना करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है आप उसमें ऐड करते हैं. कुछ भी ऐड मत करें, सिंपली आप ब्लीच क्रीम लें. और अगर आप सुपर वाइट की हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो क्या ही बात है. उसमें आप ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. ठीक है, ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगों ने लेनी है. अच्छे तरीके से मिक्स करना है. ठीक है, लिक्विड को और जो पाउडर है और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है उसको, और मिक्स करने के बाद जिस तरीके से आप ब्लीच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे. ठीक है, और रिजल्ट आप देखेंगे विजिबल कि आपके जो ब्लीच के रिजल्ट है ना कितने ज्यादा अमेजिंग और कितने ज्यादा
نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اور پروڈکٹس کو اویلیبل کروانے کے لیے ہیلپ لائن نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. سپر وائٹ والوں کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0314 77 544 62. سکھر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 0314 77 544 62. اور حیدرآباد والے ممتاز حسن خان سے رابطہ کریں گے 0370256832103702568321.

other beautiful song smart show comments kar rahe hain. Good morning to you as well. Sir Faraz Ali hame sun rahe hain. Good evening. कहते हैं दिस इज अल्ताफ अली गढ़ी बलोच फ्रॉम कराची. ओके इस्लामिक वीडियोज हमें कमेंट कर रहे हैं जी. इस्लामिक वीडियोज कहते हैं अली हसन फ्रॉम लारकाना. नाइस शो बाजी. ओके थैंक यू भाई. और इसके साथ साथ सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स. एक और गाना प्ले कर रही हूँ जी साथ साथ. उस गाने के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स. और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स का हेल्पलाइन नंबर है सिखर और नारकाने वाले. डायल करें 0314 77 544 62.

0: जे फलक जे घर मां हिक ई कुटुंब जे पंज भाउ आशत फोतन में घर धणी शाहज़ेब संदसि सबा भेण शुमाइला मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल। पुलिस आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़रण बाद घर धणी शाहज़ेब ज़ाल खे क़तल करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि आहे। वासन ॿुधायो आहे त
1: शेर जो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं। पंज मुसाफ़िर फोत थी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी आहे। ट्रेन में 500 खां 600 सवार हुआ। रेलवेज पारां हादसे में मुसाफ़िरनि जे फोत थियण थी आहे। करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ़ अली आज़म

0: केपीअ में दिल्ली जे वाकियनि में गणतीअ जोगी वाद थी वई। खैबर पख्तूनख्वा में सदर आइन तह ते एमरजेंसी लॻाई। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त आइन रियासत निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मोह ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तयन करे थो। शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे।
1: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा के पी जी सूरत हाल कदमनि बाबति में वठंदी। पीटीआई पारां एतिजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी।

इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करते हैं जी, और साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मैरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मैरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: अरे न खुश्क बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए था डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइन झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रीन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003835569।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
6: न? अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
7: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

03000113488. इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जीएल आरकाना FM 88.8, वहां पे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग को, और जहां जहां आप शेयर करना चाहें वहां वहां तक, और 8881 पे भी आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सुपरवाइज के हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको बताती जाऊंगी। सुपरवाइज का जो हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए, फ्रीक्वेंटली मैं आप सबको इसलिए बता रही हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको डायल करें, और जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है या फिर कोई मालूमात हासिल करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। तो सखर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 03144 77 5 4 6 2, 03144 77 5 4 6 2, ठीक है, ये डायल करेंगे। इसके अलावा सुपर वाइट प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए खास तौर पे हैदराबाद में आप लोग डायल कर सकते हैं मुमताज हसन खान का नंबर। मुमताज हसन खान का नंबर है 03702568323।

इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा सुपर वाइट का एक और फॉर्मूला आप लोग तैयार कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, आपने लेना है सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को, ठीक है। सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एक जार में आती है, और दूसरी आती है ऑयल फ्री एंटी एक्ने क्रीम, ठीक है। और ये ट्यूब की पैकेजिंग में आपको मिलती है। जो एक्ने क्रीम है वो आपको ट्यूब की पैकेजिंग में मिलेगी। तो ये दोनों क्रीम्स आप लोगों ने लेनी है, कौन सी, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की एंटी एक्ने ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। तो ये वाली दोनों ब्यूटी क्रीम्स आप लोगों ने लेनी है, प्लस इसके साथ ब्यूटी सीरम बूस्टर लेना है सुपर वाइट वालों का। और ये तीनों चीजें आप लोगों ने एक जार में निकाल लेनी है, ठीक है। और जार में निकाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि तीनों क्रीम्स और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आपस में अच्छे तरीके से यकजा हो जाएं। और जब ये यकजा हो जाए तो आप इनको स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले फेस को वॉश करें सुपर वाइट फेस वॉश से, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से, ठीक है। सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करें, और फिर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर जो कि आपने बनाया है, ठीक है। रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से अप्लाई करें, सुबह फिर से अप्लाई करें, नहीं सुबह फिर से अप्लाई नहीं करना, सुबह फेस को वॉश करना है, ठीक है। रात को सोने से पहले लगाना है और ओवरनाइट लगाना है, और पहले ही तीन दिन में आप वाजे फर्क देखेंगे। अच्छा, फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि जो डाउन कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाएगा, या जो पिंपल्स का इशू है वो खत्म हो जाएगा, या जो एक्ने का इशू है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, और अगर आपकी स्किन बे रौनक है, बेजान है और अच्छी नहीं है, इस वक्त बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से, तो आप इसको जो है इस्तेमाल करके अपनी डैमेज स्किन को भी रिपेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और सेफ फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज आप यूज करते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन सुपर वाइट वाले अपने ही प्रोडक्ट से फार्मूलाज बनाने की जो है ट्रिक्स बताते हैं, और कौन से फार्मूलाज किस चीज के लिए बेस्ट हैं वो भी बताते हैं। तो ऑयल फ्री जो क्रीम है, और जो एंटी एक्ने ऑयल फ्री क्रीम है, और जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है, ये तीनों चीजें जो हैं उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिनकी स्किन टाइप ऑयली है और वो ये सारे फायदे हासिल करना चाहते हैं, लाइक चिट्टा गोरा रंग और एक्ने को खत्म करना चाहते हैं, एक्ने के निशानात को खत्म करना चाहते हैं, पिंपल्स को खत्म करना चाहते हैं, तो ये सारे इश्यू खत्म होंगे और जो आपकी डिजायर रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी होगी। अच्छा, इसी के साथ हम चेंज करेंगे गाने को और कॉल्स लेंगे आप लोगों की एंड हर

0: ओके जी कॉलर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर भाई, कल भी कॉल लगाई थी मैंने, कहा है ना डेली बेसिस पे सेम कॉलर आर नॉट अलाउड। ठीक है,
1: आपका प्रोग्राम है।

बाद। और इसके अलावा जी पोइट्री लिखी है जनाब, बहते अश्कों की जबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर कर लेना, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसी के साथ हम आगे चलेंगे जी, और कमेंट भी आप लोगों के बहुत सारे रिसीव होते जाए।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz Powered by Biocon International Pakistan
2: KTN News
1: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream Uploaded by Aksa Cosmetics Pakistan
3: घर जो दरवाजो बिंदरा बंद हो इलाके वासन बुधायो आए तो शाज़िब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो आई जी सिंध वाके जो नोटिस वठने डी आई जी ईस्ट का रिपोर्ट तलब करे वरती आए
4: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरियो बोगियो पटड़ी तां लही वयूं छह मुसाफिर फोत थी विया केतरा ही जख्मी थी पिया रहमान बाबा ट्रेन कराची खां पेशावर वेंदे मुल्तान वट हादसे जो शिकार थी आहे ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ रेलवेज पारा हादसे में छह मुसाफिरन जे फोत थियण जी तस्दीक थी आहे ट्रेक बहाल करण जी कोशिशूं जारी आहिनि सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुकसान ते दुख जो इज़हार कयो वियो आहे ज़ख़्मीन खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई आहे
3: केपीए में दहशतगर्दी जे वाक्यनि में गणतीअ जोगी वाद थी खैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आईन तहत एमरजेंसी लॻाई कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारा चयो आहे त आईन रियासती निज़ाम ऐं मुख़्तलिफ़ हालतुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तरीक़ेकार जो तइन करे थो शहरनि जे जाननि जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त खैबर पख़्तूनख़्वा में अमन अमान ऐं हुकमरानी जी सूरत हाल घणी ख़राब थी चुकी हुई वफ़ाकी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा नाहे
4: सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास अॼु थींदा पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पारां इजलासनि खां पहिरियां पार्लियामेंटी पार्टियुनि जा इजलास सॾायल पीटीआई जे पार्लियामेंटी पार्टी बि अॼु गॾिजाणी कंदी पीपी ऐं नून लीग पार्लियामेंट्रीज़ खे केपी जी सूरतहाल ऐं खयल क़दमनि बाबति एतमाद में वठंदी पीटीआई पारां एतिजाज जी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी
3: वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो सिंध हुकूमत जो मसनूई निज़ानत डेटा सेंटर ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़ मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंपनियुनि ताईं रसाई ज़रूरी आहे
4: खैरपुर जे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ में दाखिलाउनि लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक उमीदवारनि जी शिरकत यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम पाबंदी बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्त रहिया
3: मेयड़ बरसा इंडस हाईवे तां अणॼातल शख़्स जो चिचिरियल लाश हथ इस्पताल मुंतकिल सुञाणप न थी सघी
4: हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस में मुबैना ज़ब्तियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज घरनि ते चढ़ाई करे 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम औरतुनि मौजूदु पुलिस बिना कंहिं जवाज़े घर ते चढ़ाई करे महिमान थी आयल 11 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वई आहे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
5: अच्छा वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय दत्त तमाम खूब सतमासु में सुने समातन की मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं के समंदर जादू की बारिश लासुल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से दर्द कम से खुशी तक जल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांतली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो हर तरह से आपकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपके चेहरे पर वर्क करेंगे और किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपको हसीन खूबसूरत और दिलकश बना देंगे। जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और वाइट एज के प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। ओके जी सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अपने हाल चाल बताते जाइए सुनिए लिसनर्स अंत के हालत उन कैसे ही आपकी हालत उम्मीद उन शदीद उनकी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करें होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं। प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स से अपनी खूबसूरती में जो है ना वो 4 चांद लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं लेकिन जब आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट परचेज करें जो कि भाई दावा कह रहा होता है कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाला है या जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता तो जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको ऐसा होता है कि भाई ये हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते क्योंकि कई मरतबा तो आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी हो जाती है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोगों को इस प्यारे प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है उन तमाम दर बातों के बारे में जो कि बातें आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती हैं और आप लोगों का जब खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई दिल खराब हो चुका है कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढेरों ढेर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को आगे से प्रोग्राम करवाएंगे। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है कसीदा सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: इनका रिजल्ट है सिस्टर और सॉन्ग जरूर प्ले करना जी जी भा मां कोशिश क्या थी ताजी पसंद जो गानो हलाए वठनासी आई तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आहे तॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा केतिरा सुठा रिज़ल्ट तव्हांखे ॾे पई ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करे ॾिसणो आहे उन खां अलावा इहे हमारे साथ सिदरा आपका शो शिकारपुर में नहीं चलता है क्यों मैं दो दिन वहां था आज लाड़काना में हूं फिदा हुसैन मक्सी और सलाम दो अद्दो खान मक्सी और उसरा बेबी को चलें जी सबको सलाम हो गया लेकिन शिकारपुर में क्यों नहीं चलता सखर वाला एफ एम अगर आप ज्वाइन करते सखर ट्यून करते तो आपको सखर से हमारा प्रोग्राम जो ना शिकारपुर में आप इजीली सुन सकते थे नहीं तो ये फिर फेसबुक वाला ऑप्शन तो है ही है कि आप फेसबुक पर कहीं पर भी हमारा प्रोग्राम आराम से सुन सकते हैं और मुलाजिम भाई हमें सुन रहे हैं वेलकम कहते हैं मुलाजिम भाई आपको भी और महर इरफान सियाल साहब हमें प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं ज्वाइन कर चुके हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे ग्रेट होस्टिंग थैंक यू वेरी मच सर आपकी ये मोहब्बतें हैं और हमारे साथ जी शहर शोरान बलोचिस्तान से मोहम्मद वसीम कहते हैं प्रोग्राम आपका पसंद है बहुत शुक्रिया जी हिदायतुल्लाह आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं मुस्कान ये मंजूर सिकरानी का गाना है ओके जी लगाते हैं आपके गाने और मोहम्मद सफर तो न्यू हमारे साथ कहते हैं हाय सिदरा 2021 अच्छा 2021 से सुना उसके बाद जो है ना 2026 में आपने मुझे ज्वाइन किया कहते हैं आपका शो में आया हूँ वेलकम तो करो ना जी जी बिल्कुल आपको वेलकम कहते हैं मोहम्मद सफर तो न्यू और आपको वेलकम के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अब आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ ना तो चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख्वातीन हैं आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटीज हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना हर स्किन के ऊपर सूट करती है क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताएंगे जितने भी नए लोग हमें सुन रहे हैं उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और गदा हुसैन भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं तमाम जी सिंधी शायरी बाबा सिंधी शायरी थोड़ो मां गलत रीड करे वेंदी आहे कहते हैं हाय सिदरा आप कैसी हो मैं भी आ गया अब किसका इंतजार है बस अब गाड़ी स्टार्ट करो क्यों हिला दिया ना गदा हुसैन मला मोहम्मद बख्श मला नूरदीन अबड़ो और शाका अबड़ो विलेज आंदल खान मला से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी बिल्कुल आपने हिला दिया हमें और गाड़ी को हमने किक मार के स्टार्ट कर दिया है मोहम्मद सलमान कुंभर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते मुझे गाना सुना दें ओके आई ट्राई जैन अली कहते हैं कि हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा ओके वासु भाई आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम वासु भाई ऐसे ही आप सब लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और आप सारे लोग जो है ना हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे तो ये वाला फायदा हो जाता है कि बाकी बहुत सारे लोगों को हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जितनी प्रोडक्ट्स है ना चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा निखार लाएंगे और आपकी खूबसूरती के हिसाब से ही इन्हें तैयार किया गया है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं चाहे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी खूबसूरत हसीन और प्यारे प्यारे बन चुके हैं टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो
1: इट्स 1:30 PM दिस टाइम अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमे आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइन एंड झुरन के घट कर ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो थींदो। यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमर

0: गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।
3: खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस, रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुझी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि जितनी भी सुनने वाली समाते हैं वो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, आप सब लोग ही ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोगों को बताती चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला वो होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार करी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या चीजें ऐड की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, जो कि आप लोगों के चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को देती है ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रेकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को सेफ रख सके, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना, आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देता है, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जिल्द की शख्सियत जो है ना, वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है, आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा। अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से जो ऐसा होता है ना कि अगर आप महंगे महंगे फेशियल्स कराने जा रहे हैं और आप लोगों को ऐसा होता है कि भाई फेशियल तो आपने हफ्ते हफ्ते में कराना है या महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा वाला सीन बना दें कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब पैसों में आपको मिल रही है, दूसरा आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा आपको रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो बहुत से भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। उनके अलावा तमाम के जेके नंबर्स बुधाया वन था प्रोग्राम जी अंदर, नंबर्स से तमाम राबतो कंदाई राबतो करने का फौरन बाद ही पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो। आई पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो बाबा, जो तमाम ने रखना तो केर रखो। अगर तमाम पांजे खूबसूरती जो ख्याल न रखना ना, तो दुनिया भी तमाम की समझती तो तमाम ई आयो बस। भाई
اپنا خیال رکھیے، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیے اور اپنی خوبصورتی کو سب سے آگے رکھا کرے. اور ان کے علاوہ اگر تاں سانے پروگرام میں موجود ہے تو آنکھے چوندا بھلی کرے آیا خور ساری گالیوں آئیں جے کہ تواں سان کندا سی تواں جا فیڈ بیکس بھی اساں کے ملندا ونندا پوسٹ کے تواں لائک اینڈ شیئر کندا ہلو ائی مکے بدھا تا تواں ڈی سکن بیوٹی کریم استعمال کرے ڈٹھیا یا انا تائیں کون کرے ڈٹھیا ہے. ان کے علاوہ جکو مو جواں کا سوال پوچھوا تا تواں ننڈپن میں جدی تواں شرارتوں کندا ہویا ائی تواں کے تواں جا گھر وارا جکیا تا سزاؤں دیندا ہوندا ظاہر گالا سزاؤں دیندا اگے تا بابا یہ تھیندو نا تا پنجی بارن کی جکے نا والدین الہی سزاؤں دیندا ہویا انن سزاؤں میں کا سزا اڑی بھی تھی سگے تھی جکا تواں کے لگندو جے ہانی تواں یاد کنا ہوندا تواں چوندا ہوندا بابا ہی ڈاڑی فنی سزا سا کے ملیا ائی تواں ان تے کھلندا ہوندا کہانی ہی بھی کا سزا ہی جکا سا کے سنجا والدین دیندا ہوا. سو مکھے بدھایو جلدی اڑی کوئی سزا تواں جے ذہن میں آہے جکا تاں کے ننڈپن میں ملندی ہو جے ائی تواں ان کے ہنمل یاد کرے منی من مسکرائندا ہو وری چوندا بابا ہی بھی ہانی کا سزا ہوئی. سو مکھے بدھایو 8881 فیس بک تے تاں مکھے جوائن کنا ہلو تھا تواں جا فیڈ بیکس بالکل مکھے ملن پیا پینل تے بھی تواں جا میسجز پر ہتے کامنٹ آئے جی ماں جلدی کامنٹ ان لائے پڑھنی ورنہ تاں جا کامنٹ جگہ نا وہ متھے بھجی ویندا ہیں. سو محمد زمان بھائی میرے ساتھ موجود کہتے ہیں گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم مائی سویٹ بوا جی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پیارے بھائی. اچھا ہدایت اللہ ہاں ویسے مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. اور کشور بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام منجا خوبصورت ادا وعلیکم السلام منجا سونا ادا. زین کہتے ہیں کہ تیرے ہونے سے حسین ہے یہ کہانی دل کی، تیرے ہونے سے ہے آباد فسانہ دل کا، ارے واہ کیا بات ہے. اور طارق بھائی لکھتے ہیں کہ گھوٹکی میں ہمارے دوست سدانی ٹریڈرز گھوٹکی، دیپک بھائی، شکیل، رتک، موہن، اکبر علی بکتی، فراز علی، یہ سب ہمارے دوست ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں گھوٹکی میں. اوکے جی، یہ سارے ہماری جو ٹیم ممبرس ہیں جن میں آپ لوگوں کے لیے دیپک بھائی موجود ہیں، شکیل ہیں، رتک ہے، موہن ہے، اکبر بھائی ہیں، فراز ہیں، یہ سب ڈسٹریبیوٹرز ہیں جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کے. تو جتنے بھی گھوٹکی والے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ وہاں سے جا کر یعنی کہ سدانی ٹریڈرز سے جا کر آپ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش کے پروڈکٹ جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کو آرام سے مل جائیں گے. اور ان تمام بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مہر عرفان سیال صاحب کہتے ہیں کہ سلام میم، دیپک راج بھائی مائی ڈسٹریبیوٹر گھوٹکی سے ڈیڈیکیشن سانگ ٹو دیپک بھائی اور ان کی ٹوئنس ڈاٹرز ہیں ویرا اینڈ ویرتا، کیوٹ پرنسز، ماشاء اللہ. اوکے جی، دونوں پریوں کے لیے پیارا سا گانا لگا دیں گے، دیپک بھائی کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں گے آپ کی طرف سے. اور بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیپک بھائی ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور یہ میرے پاس ایک بڑا پیارا گانا موجود ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سب مل کر انجوائے کریں گے، لیکن یہ والا گانا ہم مہر عرفان سیال صاحب کی طرف سے دیپک بھائی کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے اور ان کی جو پیاری سی دونوں ڈاٹرز ہیں نا ویرا اینڈ ویرتا ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ، خوش رہیں اور انجوائے کریں. وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس.

मेरी सही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता. बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते हैं, चले आप ऐसा वाला सीन है कि चले आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है.

ओके जी, खो गए सपनों में हम, लेकिन आपने जरा डेज कंप्यूटर क्रीम लगाकर उसकी खूबसूरती में खोज जाना है। और किशोर भाई कहते कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जे जो मूसा को तालक भी न हो। अली ई भी थींदो हो वैसे। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक अबू, आज लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, जैसे कमरे में बंद करता था तो हम ब्रो आपस में मुर्गा बनने की अच्छा वो कोशिश करते थे। और टॉपिक अच्छा कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। गदा हुसैन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल, आज आपका गाना लगा देंगे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं। डीज कंप्यूटर क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मल्ला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। और कहते हैं कि नूर दीन अबरो शाका अबरो विलेज आंदल खान मल्ला से आप हमारे साथ मौजूद हैं। ओके हो गया। फकीर साहिब शेख लाड़काना से हमें सुन रहे हैं, वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी, सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और स्मार्टू गोपांग कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा केसिया, कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू, वेलकम। आप बताएं डीज कंप्यूटर प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं? ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई, आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं। ओके लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप डीज कंप्यूटर क्रीम लगाइएगा, ठीक है निसार।

கோஜி மசாதா கபாப் பர டேஸ்கின் பியூட்டி கிரீம் லகாய் போ तमाम लगाई कौन बुधाईंदा हलो मुखे मीर ममताज विरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद विरोही मदेजी से मीर मोहम्मद विरोही अशफाक अली विरोही सजाद अली विरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासु भाई कहते अधी सिडो जवाब एक दफो अबे सजा डिनी हुई बदी छड़ो हुए पूरो कलाक अधी आई मामा आई चाचा कन गोशी कराईंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं है मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वखरी सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे दोदा हालिया में सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते हैं गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली है मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तुम्हारी शिकायत था न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट कर अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते हैं शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें ठीक है

किशोर भाई कहते हैं कि अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वियो आ ओके डेडिकेट टू माय स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास सही वा वास भाई कहते थी नंढपण में ना वडो शरारती हुअस घर वारन सा कावड़ कंदो हुअस वडो घर जो ज्ञान कंदो हुअस आईली वो कुटकी भी जाम खाइंदा हुंदा छड़े त कोन दींदा हुंदा घर वारा अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम कहते हैं अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह मत ढूंढ सब सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम जी समाटू तांचो खानो भी हलायूं था और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से हमें सुन रहे हैं अरबेला भा तां घोटकी मां जेको आने डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सगो था घोटकी में तवां जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा अवेलेबल कराए छडी आहे सो घोटकी में दीपक भाई वेठो आहे उन वटा तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश वठी सगो था चाचा खालिद कहते हैं सजाए मिलना तो अब स्टार्टेड बचपन में तो हम मासूम थे ये टॉपिक आंसर क्या बात है चाचा की हाँ सजाओं मिलन थी अरे बाबा केर चाचा के सजाओं दे

निसार भाई कहते हैं मुझे बड़ी अच्छी सजाएं मिली थी, उनको मैं जिंदगी भर याद करता हूँ। कौन सी सजाएं मिली ये भी तो बताएं। चलो मजा कंदा सी पर तवा इते वेओ, इते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, नखा पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा। वापसी जल्दी मोड़ी तवा ईंदासीं। तवा काॾे न वञो, इते वेठा हुजो, असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो बाबा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन मिले थी त नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो। मां हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर आहे बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां। सो लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा थींदा।

0: It's 2 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
5: मेरे फेस पे

मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरियूं बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। छह मुसाफिर फोत थी विया, केतिरा ई जख्मी थी विया। रहमान बाबा ट्रेन कराची खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफिर सवार हुआ। रेलवे पारां हादसे में छह मुसाफिरनि जे फोत थियण जी तसदीक, ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते डुख जो इज़हार कयो वियो। ज़ख़्मीनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत कई।

0: सुसाइड खुदकुशी लगी रही है छो त जिन तरीके से गनशॉट थो जाल मुड़स के बार नशा वशे दिनी हुई है प्लस में सुसाइड नोट जो मिलन याद रहे कि सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट है वो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट ना है जडे घर मालिकान आया है वो जोर से खड़काया अथन नेठ दरवाजो तोड़ो अथन बॉडी जो पोस्टमार्टम हाने थी रो है हर एंगल का दिसनाथी जेके हकीकत मन का दोस्त शेयर कर
1: मलीर जे फलकनाथ सोसाइटी जे घर में एक ही कुटुंब जे पंज भातिन जा लाश थाया फोतिन जे घर धणी शाह जेब जाल संदस सबा भेण शुमायला मासूम धीर आर्या आयजन शामिल आन पुलिस जो चवण है बिन्हीं बारन नारी शुमायला के जहर दही मारण बाद घर धणी शाह जेब जाल के कतल करण बाद आपघात किया घर जो दरवाजो भी अंदरां बंद हो इलाके वासिन बुधाया है शाहजेब मुआशी तौर से परेशान रहो हो आईजी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी ईस्ट का रिपोर्ट तलब करे वरती
2: मैटिक्स पाकिस्तान
3: जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में
2: अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
6: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
9: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
10: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003
6: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
11: السلام علیکم ادا.
12: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
11: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
12: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
11: نہ ادا؟
13: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
11: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
12: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
11: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
13: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
12: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
14: 03013992836.
15: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
16: تاج ویلفیئر

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन अब आप लोगों को बताया जाएगा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को जो बताने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप लोगों के लिए कितने सारे फायदे छुपे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप तमाम से लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि यहाँ पर वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हीं सेम नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो नंबर सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे वाइट एज ब्यूटी क्रीम है, वाइट एज ब्यूटी क्रीम है जनाब। उसके अलावा वाइट एज ब्यूटी सोप है, वाइट एज का फेस वॉश है, और साथ साथ वाइट एज की डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। उसके अलावा वाइट एज लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है। अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए वाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना, ये भाई वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको वाइट एज का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई भी साबुन का यूज करते हैं तो सारे लोग ये वाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप है, इतना कमाल का आपकी स्किन को बना देगा, इतना सॉफ्ट सा ग्लोइंग सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वाइट एज का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो वाइट एज का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए, तो आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम और वाइट एज का जो है ना वो साबुन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के चेहरे पर वाइटामिन सी की कमी है, या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम वाइटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए वाइट एज का वाइटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और वाइट एज का जो वाइटामिन सी फेस वॉश है ना, या की स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है तो आप वाइट एज का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्नी होते हैं ना, एक्नी को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा होता है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। इतने प्रोडक्ट जो ना बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स की जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट कर सके, एक्नी से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइट एज का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है ना, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये वाइट एज का आप एक्नी ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। ये डॉक्टर पिम्पल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे। और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है, ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्नी ट्यूब लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे
डॉक्टर पिंपल, एंटी एक्नी ट्यूब तो आपके चेहरे पर जितनी भी एक्नी है या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्नी बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा। एक्नी मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है और आपके चेहरे पर जो है ना सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनका अलावा जेको असा वट व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है। मैं तांके आराम आराम से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बुधाई ना, पर खोर सारा डी थी ना तो तमाका थोड़ो विसरी वयो हुंदो। इन लाइ मैं तांके सभी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर डी दिए चाहती तो केड़ा केड़ा प्रोडक्ट है उनके तमा किया किया लगाए सको था। बाकी हां डिटेल्स तमा सा बिल्कुल शेयर करना सी। अगर तमा इस्तेमाल करना व्हाइट एस जा प्रोडक्ट तो तमा के खबर हो जे जेको भी प्रोडक्ट ता लगाया था उन जो रिजल्ट छाम लंदो तमा के वो तमा छो लगायो पया। सो अगर व्हाइट एसी लवली क्रीम जी असा गाल कयो था तो व्हाइट एस जो लवली फार्मूलो आहे ना ही डाढ़ो जबरदस्त कमाल जो फार्मूला है बाबा। ही लवली क्रीम आहे जेका तमा मतलब डीह जो भी लगाए सको था, कें फंक्शन में वनो था, का पार्टी आहे या फिर जेके कॉलेज वेंदी छोकरी हुंदी आहे या तमा जेका जॉब आहे, तमा स्कूल वनो था या कोई भी तमा जो कम आहे, तमा जे पर्स में बस व्हाइट एस लवली क्रीम हुजे यानी कि सफा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तमा जे चेहरे ते। तमा के खबर पंदी तो एतरो जबरदस्त हिकड़ी लवली क्रीम तमा के निखार डे वई तो तमा उनके इस्तेमाल करे पांजे खूबसूरती में इजाफो आने सको था। व्हाइट एसी जेका लवली क्रीम आने बाबा रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जिनजे अंदर 30 वाइटमिन्स एड कया वया आहिनि। इन लाइ एड कया वया आहिनि त तव्हांजी स्किन ते जेके वाइटमिन्स जी कमी हूंदी आहे न उहा पूरी थींदी रहे। वाइटमिन्स की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एस की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है। जो लोग फेयरनेस क्रीमें लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भाई आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एश लवली क्रीम लगा लीजिए। आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एश लवली क्रीम से मिलने वाला है। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां आ रही है तो व्हाइट एश का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटमिन्स का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है खास करके हमारे चाचे को तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल वाइटामिन से बना हुआ है और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है। 3 अलग अलग वेरियंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। एक लेमन का वेरियंट है, दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरियंट है और तीसरा खीरे का वेरियंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाए कि अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है। जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एज सोप हो, व्हाइट एज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी राबता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता देंगे आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को और डायल कीजिए 0332738 4309। बुड़ी 332 73 84 390। बो नंबर आ 03-12-50-25-907। बुड़ी 312 50-57-970।

ॾाढो भलो गानो हलायो आहे होमेरा चन्ना जी आवाज़ में सहरो आहे वैसे ही सहरो असांखे हिदायत अला फरमाइश कई अलाए कंहिंजी शादी थो कराए तव्हांजी त नथी थिए न मता थी बि सघे थो थींदी जे छो त तव्हां असांजा प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कया आहिनि चाहे उहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि बाबा जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाक़ई ख़ूबसूरती किथे लिकियल हुई अच्छा हिते पैनल जी तरफ़ अचूं था त तव्हांजा खोड़ सारा मैसेजिस जमा थी विया आहिनि सो पढ़ी वठंदासीं

हा भाई मुखे न ही दरअसल असांजे किशोर भाई के भाभी मिली जंहिंजी तबियत जेका आहे उहा फ़क़ीराणी आहे असांजी भाभी वाकई ॾाढी भली आहे उहा भली इन लाइ आहे छो त हूअ वाइटी सां प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदी आहे न वैसे तबियत में भाभी ॾाढी भली आहे अला साईं ख़ुशि रखे तव्हां मुंहिंजी जोड़ी सलामत हुजे ऐं तव्हां ईअं ई असांजा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो हुन खां अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जवेरिया असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई लाडकाणी खां जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रोबा भी हमारे साथ मौजूद और मौजूद जी ये वालेकुम असलाम सिदराबाद जी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोरजा राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है ओके जी बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं।

0: सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कोन है यहाँ तो सभी जला अलग अलग प्रोडक्ट्स मुँह ठारा आया है यानी के ताकि फेस वॉश वठनो आ ता वाइटे जो फेस वॉश लगाए सको था साबुन हणदा ता वाइटे जो साबुन लगाए सको था वाइटे सी ब्यूटी क्रीम भी आए जनाब नाइट क्रीम अगर तुम इस्तेमाल करना चाहे कोई सुठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जिन अंदर खीर हो एवोकाडो हो एलोवेरा हो वाइटे सी ब्यूटी क्रीम मौजूद है वरी कंखे एक्नी प्रॉब्लम है दाना नथा छदे तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ठारा वरी कंखे कोई फेयरनेस क्रीम लगाई है जो डीह जो लगाए मेकअप की जरूरत है न पे तो वाइट एसी लवली क्रीम ठाराई थी माव ये सब प्रोडक्ट्स वनो पाने करीबी जनरल स्टोर से वही वी अचो ये सब प्रोडक्ट तक मुनासिब पैसों में मिलता है मुनासिब पैसों से गडोग स्किन के लिए ढा फायदेमंद छो तो ये सब जो प्रोडक्ट्स नेचुरल अजाज से तैयार थे वाइटमिन जो भरपूर फार्मूलो है सो लगाइंदा रहो तुम मर्द मायू सभी के लिए बाबा खूबसूरती हासिल कर सभी जो हक है सो बोलो बाबा साडा हक ऐसे
1: न कैसे भी कमी थसका आहे बस
0: अच्छा अली रज़ा लगाड़ी भा ये गानो हले पे शमन जो एंजॉय करे वेठो मुगल उमरानी भा से गड मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम कहते तमा के और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हैं हेलो जी मैं ठीक हूँ ताम उदा की आयो आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते है मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूँ आपका गाना लगा देगा और उनका अलावा दर्दी दिल आ चुके कहते हेलो हटो हटो मुझे आने दो जरा वालेकुम असलम चंदा जानी कैसी हो मैं बहुत प्यारी आप बताए कैसी है।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: मजबूत विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा आइन। हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लाए 0301-96-8051।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके जी, वापस अच्छी व्यास के दफ़ो बीहर तुम्हारा प्रोग्राम बुध पाया वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड है बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो इतने असा प्रोग्राम की लास्ट लिंक में अच्छी वह जिन जिन मानन हाने हाने बुधन स्टार्ट कर जो स्टार्टिंग का वही असा गड मौजूद है सभी जो मोहब्बत हुआ बाबा तक चौंता भली करी आया आपकी मोहब्बत समाधि चाहते हैं और इन अलावा जो है सो असा सोना सोना मानू बुधन पाया जिनमें असा गड शामिल है सखरवारा मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरंड मेहरापुर माजली नूरियाबाद ए लाड़काने जो समातू एडा डिसो खोड़ सारा खूबसूरत मानू असा सगन मौजूद है जेके वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करी रहा है ते असा तवा के भला भला गाना भी बुधाईंदा सो ही फायजा अली जी आवाज में गानो हले पे जेको असा अब्दुल्ला भाई के डेडिकेट कयो सी। अच्छा तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर कदा हलो तेस तई मां चाहती क्या मां ताके वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाया थी अगर तुम वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया जी बिल्कुल वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो खबर हो वाइट एश ब्यूटी क्रीम की जी क्वालिटी है ना वो तमाम जबरदस्त

जी कंबर में भी असांजा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि। कंबर में बि तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स किथां बि वञी वठी सघो था। कंबर में बि तव्हांखे आराम सां मिली वेंदा। सो अगरि तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करणु चाहियो था, जेका तव्हांजी हर स्किन जे लाइ आहे, यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि सेंसिटिव आहे त उन ते बि लॻाए सघो था। छो त हुनजो फार्मूलो जेको आहे न उहो तमामु ज़बरदस्त आहे। नेचुरल अज़ान जे अंदरि एड कया विया आहिनि, जीअं हिन जे अंदरि तव्हांखे एवोकाडो मिले थो, खीरु आहे जनाब, एलोवेरा आहे, ऐं उन खां अलावा उहे तमामु चीज़ूं जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ बहितर आहिनि, तव्हांजी स्किन खे खूबसूरत बनाए सघनि थियूं। ऐं हिन जे अंदरि यानी कि वाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 बि मौजूद आहे। यानी कि तव्हां ॾिठो हूंदो नॉर्मली त क्रीम जे अंदरि SPF 25 हूंदो आहे या 20 हूंदो आहे या ज्यादा ज्यादा जेको आहे 40 हूंदो आहे, लेकिन असां हिते ॾिसूं था त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 आहे। अगरि तव्हां इस्तेमाल कंदा वाइट एश ब्यूटी क्रीम त तव्हांखे जनाब खूबसूरती सां गॾोगॾु तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी, छो त तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न इहे खोड़ सारा अहिड़ा असरात पइजी वेंदा आहिनि सिज जा, जंहिंजी वजह सां तव्हांजी स्किन हिकु त मुरझाइजी वेंदी आहे, ॿियो त तव्हांजी स्किन जी जेका रंगत आहे उहा काफ़ी डल थी वेंदी आहे। अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, ख़वातीन आहियो, तव्हां सभिनी खे खपे त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो फार्मूलो जेको आहे ट्राए करे ॾिसो। ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां अकेली इस्तेमालु करणु चाहियो था त बिल्कुलु करे सघो था, पर वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो अगरि तव्हां फार्मूलो ठाहिणु चाहियो था जंहिंजे अंदरि वाइट एश लवली क्रीम विझी सघो था, वाइट एश ही जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे इहो विझी सघो था, इहे सभु चीज़ूं एड करे तव्हां जॾहिं इहो फार्मूलो ठाहे पंहिंजे चेहरे ते लॻाईंदा न त तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। जेके तव्हां ॿाहिरां इलाही किना किना फार्मूला वठी ईंदा आहियो न दुकाननि तां, जेके अॼुकल्ह माण्हू ठाहे तव्हांखे चवंदा त बाबा वेठो हणी ॾिसंदो त भलो रिज़ल्ट मिलंदव, बाबा उन्हनि खां थोरो बचो, अलाई केॾा केॾा उन्हनि में अलाए कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट विझंदा आहिनि। सो तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ सेफ फार्मूलो ठाहियो, वाइट एश ब्यूटी क्रीम हुजे, वाइट एश लवली क्रीम हुजे, ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब हुजे, इहे टई चीज़ूं मिक्स करे जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त केतिरो ज़बरदस्त रिज़ल्ट जेको तव्हांखे मिले पियो, ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाक़ई केतिरे सुठे तरीक़े सां तव्हांजे चेहरे ते असर बि कनि पिया।

ओके जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप वाइटेज की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। कहते हैं अल्लाह मालिक है बाकी ठीक है ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी, एक राज की बात बताओ। अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल कमाल की आ रही हैं। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी कुछ कहती थी तो समझ ही नहीं आती थी तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके उन्हें जो पो असर लगे तो हले तो आई तव तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तव ब मैसेज अच्छी वाया असान पैनल से। सो थैंक यू सो मच सोनी तगर मौजूद है तुम मोहब्बतू आन बबा ये कदें कदें पांच हुजन जो सबूत दई छींदा कर। और हमारे साथ जुलरी का खालिक लाशारी शो वी आई पी आए, थैंक यू वेरी मच खालिक भा। अच्छा मैं कोशिश क्या थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तक बुधाए वम ऐसा टाइम बची होते इतने इलाही सारा कॉमेंट जमा थी वन ली मथे भजंदा था वन ओ ये भजंदा था वन। अच्छा हमारे साथ है गुल यासीन नाज भाई, आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हैं हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा, वाइटेज का आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें, भाई तारिक भाई को बोल दें, तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं के वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, मुझे शादी थी रही आहे, कल आपने दुआ की काम दिखा दिया। भाई आपकी दुआ दिसो मुझे दुआ के लिए फास्ट सर्विस वाकई मुझे दुआ असर कंदी था दिसो तां कल मुखे चयो ता दी मुझे शादी न पई थी जैसे भी डेट फिक्स थे थी तो कुछ न कुछ फैमिली में थी वेंदो आहे आई तवा जी दिसो हाने शादी थी इंशाल्लाह खैर से तवा जी शादी थी वेंदी ता ओतरे डीन में ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो ठीक है। आई वरी तवा जदे वाइट एज जो ही फार्मूलो ट्राई करे दिसना न ता के इन मा भी भलो रिजल्ट मिली वेंदो सो ता लगाई रहो शादी तई सफाई पप्पू थी वजो। जी वैसे हिदायतला सही बात है, शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि मानना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साई वाह वाह साई वाह। अच्छा एसन अली भुक्टी हमें लारकाना से सुन रहे हैं, एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज डहरी सुन रहे हैं, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम, सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को वेलकम।

अच्छा अख्तियार अली गबर भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान गबर, जुल्फकार अली गबर, अली दोस्त गबर, प्रोग्राम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात। हाँ। पाने गोठन में भी वाइटेज का प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था। हाँ।

राजा नज़र मोहम्मद भट्टी भा तव्हां खे प्रोग्राम वणे पियो, गाना वणन पिया, सो बाबा बिल्कुल ही असांजो सोहणो प्रोग्राम आहे जंहिंखे तव्हां ॿुधंदा आहियो ऐं जंहिंमें तव्हां खे ख़ूबसूरती जा राज़ बि ॿुधाया वेंदा आहिनि। किशोर भाई कहते हैं कि मूं ते कावर करण खां बहितर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। ओ इहा ॻाल्हि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए बाबा जी सोना थी वेंदा। और गदा भाई कहते हैं सिदरा देख लो, आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े, सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज। तो प्रोग्राम जब मैं कर लूँ ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट जो है ना उस पर सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। जब दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली, यानी कि आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिली ऐसा है ना। अच्छा चाचा तव्हां जेको गानो चयो न उहो अहिड़ो गानो आहे जेको 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदासीं, ठीकु आहे? चोरी चोरी चुपके चुपके समझी वञो पाण।

भगे दे साडा हक एथे रख मामी तयो जवान थी वन्यो आई पांजे पांजे हिसे जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेस करे छो तमा केड़ो भी प्रोडक्ट वठी इना वो तमा जे खूबसूरती में चार चंड लगाए छरिंदो वैसे तमा रेगुलर कोई कम कयो था को जॉब कयो था या पढ़ो था पढ़ायो था त तमा जे लाए वाइटिश लवली क्रीम सफा बेस्ट रहंदी बाबा वाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम आए जेका तमा बस ये चेहरे ते लगाए छरिंदा ता चुटकिन में रेडी थी वेंदा आई वाइटिश लवली क्रीम जेका ये तमा जे चेहरे ते जेको ना ये भी थिनो आ त पघर भी इलाई लवली क्रीम अगर ता लगाइंदा हो त चेहरे ते पघर निकरी इंदो आहे या वरी ये निशाने निशाने ठई वेना है त जदी ता वाइटिश लवली क्रीम लगाइंदा त एडो को भी सीन न थिनो आई तमा जी स्किन सफा स्मूथ हुंदी आई उपतो तमा जे चेहरे ते जेको ना एडी शाइनिंग अची वेंदी जदी ता वाइटिश लवली क्रीम लगाए करे बाहर निकरंदा त मानु ता का पुछंदा आए हाय चमको प्या

0: हा ॿुधाए बाबा इहो कहिड़ो प्यार आहे तव्हां वाइट एस जो प्रोडक्ट कोन पिया वठो इहे मोहबतूं न आहिनि बाबा मोहबतूं दोनों तरफ़ से निभाई जाती है समझो था न ऐं रिहान खान खोसो भाई में सुन रही वालेकुम असलाम प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलई जो गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायोसीं और हमारे साथी रमज़ान भाई रमज़ान भाउ तव्हांजो गानो जेको पंज बजे वारे प्रोग्राम ॿुधूं था ठीकु आहे हीउ मरियल गाना पंज बजे वारे प्रोग्राम में फरमाइश कंदा कयो और फराज डेरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है हाँ ना वही तो बताते हो बस अलग आला तुम लगाईंदा ना लगाए सो सोना थी
1: वेदा
0: अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं वाह वाह वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम यारे भाके चौंदा भली करी
1: आया
0: अच्छा सुमाटो कहते हैं कि सदरा चाचू लाए भी दुआ अगर चाचू जी शादी तो थी वही या नहीं तवा जला क्या पर तुम वाइट जो प्रोडक्ट लगाए तवा जी भी शादी थी वेंदी हजार भाई कहते हैं कि आपका शो रिकॉर्ड होता है एफबी पे सिस्टर फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू ये आपका प्यार है अच्छा जी पाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता पोइट्री मैंने सुना दी अब आपकी बारी इरशाद इरशाद क्या जाए हिकड़ो मिंट वेड़ो पानी

ओके जी हेडे होडे अलाई छा छा तवहा। अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते इजाजत वरी तासे मुलाकात मुझी 5 बजे वाले प्रोग्राम में थे पर सो फहीम भाई कह रही आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है यदा खुश रहा गई ओके तांजो हुकुम यो उधायो और बस मोकलाणी आ ऐसन कहते मां भी वेठो हां पर खामोश कोई गाल न कोई गाल है न तो मुसता मूसा गाल है नहीं के बे के छडे दियो बाबा चलो 5 बजे वाले प्रोग्राम में मिलूं था पांच ओ हेडो सारो ख्याल रखना किथे का गलती थी हो जे तो माजरत के जो को मैसेज रेजी हुआ को गानो शानो रेजी हुआ तो बाबा माजरत कयूं था मोकलाणी ना ही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics.
4: Because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far. But the Trump dividend, so...
5: अमेरिकी सदर ईरानी क़यादत के निशानों बनाने लाइ हद पार करण जो एतराफ़ करे वरतो रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद्द करे छॾियूं डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी क़यादत के निशानों बनाइण में अमेरिका हद खां निकिरी वियो हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि ईरानी नाइब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबादी चयो आहे त अमेरिका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे जल्द जवाब ॾिनो वेंदो

0: यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा। कमीज़ स्टेट में बि फ़ौजी अॾे ते हमिलो। सऊदी अरब ॿिन्ही हमलनि जी तसदीक करे छॾी तसदीक न कई आहे। OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमलनि जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि। आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररीअ लाइ जुडिशियल कमीशन जो इजलास। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनाउल ऐं ॿिया मेंबर इजलास में शरीक। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि इजलास में आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो।
1: वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वान में जदीद टेक्नोलॉजीअ वारनि मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो। सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत, डेटा सेंटर्स ऐं टेक्नोलॉजी तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो। स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे, मुकमल तरबियत ऐं सहकार जी ख़्वाहिशमंद आहे। डिजिटल मईशत लाइ जदीद कंप्यूटिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे।
0: वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी सां यूरोपियन यूनियन जी हिजरत बाबति कमिश्नर जी मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हि हुई। यूरोपी कमिश्नर पारां इंसानी स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां खयल क़दमनि जी वाखाण कई वई। मोहसिन नक़वी चयो आहे त इंसानी स्मगलिंग जे मुकमिल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कम करणो पवंदो।
1: मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जो समूरे बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं। 6 मुसाफ़िर फौत, केतिरा ई ज़ख़्मी। रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी वई। ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुया। रेलवे पारां हादसे में 6 मुसाफ़िरनि जी तसदीक थियण जी तसदीक करे छॾी। ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियत फराहम करण जी हिदायत।

0: सुसाइड खुदकुशी लगी रही है छो तो जी तरीके से गनशॉट थो जालिम मुड़स के बार जी नशा वशे दिनी हुई प्लस में सुसाइड नोट जो मिलन याद रहे कि सुसाइड नोट हैंड रिटन नोट है वो टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट ना जदी घर मालिकान आया तो जोर से खड़का अथन नेट दरवाजो तोड़ो अथन बॉडी जो पोस्टमार्टम हाने थी रो है हर एंगल का दिसनासी जेके हकीकत मान ता दोस्त ना शेयर कर
1: मलीर जे फलकनाज सोसाइटी जे घर मा एक ही कुटुंब जे पंज भातिन जा लाश थाया हन फोतिन में घरदड़ी शाहजेब संदर जाल सबा भेण शुमाइला मासूम धीर आर्या आयजन शामिल आयन पुलिस जो चवणा है ते बिनी बारन ए नारी शुमाइला के जहर डेई मारण बाद घर धणी शाहजेब जाल के कतल करण बाद आपघात कयो आहे घर जो दरवाजो भी अंदरां बंद हो इलाके वासिन बुधायो आहे ते शाहजेब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो आईजी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी सां रिपोर्ट तलब करे वरती
2: पाकिस्तान
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर 0300-335-69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुझी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहराबपुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-3992836।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।
6: प्यारो दोस्त साईं इमरान साहब जी ख़ासि फरमाइश आहे, फरमाइश आहे।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जहमे आहिन चार रंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द के रिस्टोर करे, उन्हें जी नमी के लॉक करे, आई चामरन जी खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर, आई रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट, उन्हें सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: शहीद थियण आई आवा मजाक कयो ईअं न थींदो अवाम हाणे नारनि जे पुठियां ख़्वार न थींदो खैबर पख़्तूनख़्वा खां सिलसिलो शुरू थियो आहे पीटीआई हाणे किथे बि नज़र न ईंदी केपीअ में समूरा कदम आइन मूजिब खयां आहिनि वफ़ाकी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा न आहे हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे केपीअ में हुकूमती निज़ाम मुकमल तौर ते मफ़रूज थी वियो सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तरण चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तरण चयो आहे त केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाक्यनि में ॻणितीअ जोगी वाद थी खैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई अमरीकी सदर ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो इतराफ़ करे वरितो रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद्द डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण में अमरीका हद खां निकिरी वियो हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे जल्द जवाब ॾिनो वेंदो यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा खुमेस मस्जिद में बि फ़ौजी अॾनि ते हमिलियो सऊदी ॿिन्ही हमलनि जी तसदीक न कई ओआईसी सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी लाइ जुडिशल कमीशन जो इजलास पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनाउल्लाह ऐं ॿिया मेंबर इजलास में शरीक सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि इजलास में आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां चीनी शहर वुहान में जदीद टेक्नोलॉजीअ दौरान मुख़्तलिफ़ मर्कज़नि जो दौरो सिंध हुकूमत जो मसनूई ज़हानत डेटा सेंटर्स ऐं टेक्निकल तरबियत वारनि शोबनि में सहकार वधाइण जो फ़ैसिलो स्मार्ट गवर्नेंस ऐं मसनूई ज़हानत खे हथी ॾियण लाइ चीन सां सहकार जी तजवीज़ मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत रुगो टेक्नोलॉजीअ जी ख़रीदारी नथी चाहे मुकमल तरबियत ऐं सहूलतकारीअ जी ख़्वाहिशमंद आहे डिजिटल मईशत लाइ जदीद कम्प्यूटिंग ताईं रसाई ज़रूरी आहे वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां यूरोपी यूनियन जे हिजरत बाबति कमिशनर जी मुलाक़ात ॿितरफ़नि लाॻापनि ऐं इंसानी स्मगलिंग खे रोकण ते ॻाल्हियूं यूरोपी कमिशनर पारां इंसानी स्मगलिंग रोकण लाइ पाकिस्तान पारां खयल क़दमनि जी वाखाण मोहसिन नक़वी चयो त इंसानी स्मगलिंग जी मुकमल ख़ात्मे लाइ गॾिजी कमु करणो पवंदो मुल्तान में शेरशाह पुल वेझो रहमान बाबा ट्रेन जूं समूरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं छह मुसाफ़िर फोत केतिरा ई ज़ख़्मी रहमान बाबा ट्रेन कराचीअ खां पिशावर वेंदे मुल्तान वटि हादसे जो शिकार थी वई ट्रेन में 500 खां 600 मुसाफ़िर सवार हुया रेलवेज़ पारां हादसे में छह मुसाफ़िरनि जी तसदीक करे छॾी ट्रेक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ट्रेन हादसे में जानी नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार ज़ख़्मियुनि खे बहितर तिबी सहूलियतूं फराहम करण जी हिदायत
6: जंहिं तरीक़े सां गनशॉट थियो आहे ज़ाल मुड़ुस खे उन ॿार जेके आहिनि उहे उन्हनि खे नशियावर शइ ॾिनी वई आहे प्लस में सुइसाइड नोट जो मिलनि ऐं यादि रहे की इहो सुइसाइड नोट हैंड रिटन नोट आहे को टाइप रिटन नोट या प्रिंटेड नोट न आहे ऐं जॾहिं घर मालिकान आया आहिनि उहे ज़ोर सां खड़कायो अथनि नेठि दरवाज़ो तोड़ियो अथनि बॉडी जो पोस्टमार्टम हाणे बि थी रहियो आहे हर एंगल खां ॾिसंदासीं जेके हक़ीक़त मां तव्हां ॾिसणो आहे शहर ते
5: मलीर जे फलकनास सोसाइटीअ जे घर मां हिकु ई कुटुंब जे पंज भातियुनि जा लाश हथ फोतुनि में घर धणी शाहज़ेब संदसि ज़ाल सबा भेण शुमाइला मासूम धीअर आर्या ऐं आयज़न शामिल। पुलिस जो चवण आहे त ॿिन्ही ॿारनि ऐं नारी शुमाइला खे ज़हर ॾेई मारण बाद घर धणी शाज़िब ज़ाल खे क़तल करण बाद आपघात कयो आहे। घर जो दरवाज़ो बि अंदरां बंदि हो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त शाज़िब मुआशी तौर ते परेशान रहंदो। आई जी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी ईस्ट खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। खैरपुर जी शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लाइ एंट्री टेस्ट 4000 खां वधीक शागिर्दनि जी शिरकत। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया एंट्री टेस्ट दौरान कापी रोकण में नाकाम। पाबंदीअ बावजूद शागिर्द टेस्ट दौरान मोबाइल फोन जो सरेआम इस्तेमाल कंदा रहिया। सिक्योरिटी इंतिज़ाम सख़्त रहिया। मेहड़ भरसां इंडस हाईवे तां ॼातल शख़्स जो चिचिरियल लाश हथ इस्पताल मुंतकिल, जंहिंजी सुञाणप नथी सघी। कराचीअ में सीटीडी ऐं हसास इदारनि जी गॾियल कार्रवाई। चार शकी दहशतगर्द गिरफ़्तार। सीटीडी तर्जमान मूजिब शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सीटीडी ऐं वफ़ाक़ी हसास सिविल इदारे जी गॾियल कार्रवायूं कयूं आहिनि। कार्रवाइयुनि दौरान पाबंदी मिलियल तंज़ीमनि जे चइनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार दहशतगर्दनि में ग़ुलाम हुसैन, आफ़ताब अहमद ऐं शुएब समेत चार ॼणा शामिल आहिनि। दहशतगर्द हसास हंधनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि जी रथाबंदी करे रहिया हुआ। खेरापुर में बदमनीअ ख़िलाफ़ किंगरी तालके जे 20 खां वधीक स्कूलनि जे उस्तादनि जो धरणो। उस्तादनि वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ इतिजाजी मुज़ाहिरो करे शाह हुसैन बाईपास वटि धरणो हयो। कोटड़ीजीअ में बि बदमनीअ ख़िलाफ़ रिंद बिरादरीअ जो मेराण हाईवे ते इतिजाज इलाइक़े में अमन अमान बहाल कराइण जो मुतालबो। हैदराबाद में मदीना टाउन वासी औरतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे गिरफ़्तार करण जो इल्ज़ाम। औरतुनि मूजिब पुलिस बिना जवाज़ घरनि ते चढ़ाई करे नौजवान खे खंभे गुम करे छडि॒यो आहे। गिरफ़्तार नौजवान खे आज़ाद करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। मीरपुर ख़ासि भरसां रोड ते लॻल पेट्रोल यूनिट्स खे बाहि लॻी वेई। टे ॼणा सरी ज़ख़्मी। टंडरो आदम नाके वटि पेट्रोल जे ॿिनि यूनिट्स खे बाहि लॻी। बाहि विसाइण जी कोशिश दौरान फायर ब्रिगेड अमले जे ॿिनि मुलाज़मनि समेत टे ॼणा सरी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड कुझु देरि जी महिनत बाद बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। दादूअ में थड़ी मोहबत भरसां संगावती तकरार तां कतल थियल औरत वारे केस जो जर्गे ज़रिए निबेरो थियो। धुरियुनि ते गडि॒यल तौर ते 90 लख रुपया डंड लॻायो वियो। ॻोठ मीर मोहम्मद भंड में संगावती तकरार तां औरत जे कतल ऐं घर खे बाह ॾियण जो फ़ैसिलो थियो। साहब खान ऐं गुलज़ार भंड विच में हलंदड़ तकरार जो महबूब भंड जे सरपंचीअ में निबेरो थियो। साहब खान भंड ते औरत जे कतल जो 75 ऐं गुलज़ार भंड ते घर साण जो 15 लख रुपया डंड मुक़ररु कयो वियो। निबेरे खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि खे भाकुर पाराए खीरखंड कयो वियो। ऐं शिकारपुर वेझो चोर मंदर मां लखें रुपियनि जो सामान बुहारे विया। चोरनि मंदर मां सोन, रोक रक़म, पख ऐं ॿियो सामान चोरी कयो। मंदर जे साल सार संभाल कंदड़ पवन कुमार चयो आहे त चोर मंदर जा ताला टोड़े दाख़िल थी सभु कुझु बुहारे विया। चोर गिरफ़्तार करे सामान वापसि करायो वञे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर।
8: ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
9: مہراب پر بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھا بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ مہراب پر تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کرو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ مہراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे खुश बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बाहिर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द न आहे. दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिक ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं? कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में ॻणितीअ जोगी वाध थी. खैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आइन तहत एमरजेंसी लॻाई. फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो त तब्दील थी वेंदो. नाकामीअ जी का बि गुंजाइश न आहे, रुगो कामयाबी घुर्बल आहे. सेनेटर फैसल वाडा केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ खे वार्निंग ॾींदे चयो आहे त फैसल करीम कुंडीअ जी कारकर्दगीअ जाइज़ो वठंदो रहंदुसि. नाकामीअ जो को बि जवाब न ॿुधंदुसि. पाकिस्तान ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदड़नि जा नसुल तबाह करे छॾींदासीं. 180 ॾींहं घणा आम आहिनि. ही पार्ट 1 आहे, पार्ट 5 बि थी सघे थो. जमहूरियत खे हलाइण लाइ बचा जमूर आणणो पवंदो. पाकिस्तान खे रीबोट करण वारो ऑप्शन ॾिसी रहियो आहियां. अवाम हाणे नारनि जे पुठियां ख़्वार न थींदो.
7: They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of our roll calls. President! Nobody, I don't want. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far. But the Trump dividend, so...
6: अमरीकी सदर ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो एतिराफ़ करे वरितो. रूस ऐं चीन पारां ईरान जी मदद करण वारियूं ख़बरूं बि रद. डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी क़यादत खे निशानो बणाइण में अमरीका हद खां निकिरी वियो. हाणे जंग जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि में मुश्किलात जो शिकार आहियूं. चीन ऐं रूस ईरान जी मदद न करे रहिया आहिनि. ईरानी नायब परडेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका जे जवाब जो जाइज़ो आख़िरी मरहले में आहे. जल्द जवाब ॾिनो वेंदो. यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा. खमेस मशीद में बि फ़ौजी अॾे ते हमिलो. सऊदी अरब ॿिन्ही मुल्कनि जी तसदीक न कई. OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि. आला अदलिया में जजिस जी मुक़ररीअ लाइ सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन जो इजलास. सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच जे मुदे में हिकु साल वाद जी मंज़ूरी. इजलास में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी राणा सना लाइ पहिरियों भेरो शरीक थिया. ज़रियनि मूजिब चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो आदर भाउ बि कयो. कमीशन वकील अहसन बोन जी डिग्री बि तस्दीक करे छॾी आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
8: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
9: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खु़शख़बरी. पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो. A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद कयो. स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि. पते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

अपनी जिल्द को दें नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार। कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

छाखे वञो छो बेली थिए बीहन जो वठ कंजक करीम जी जग जो वाली जो सौखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अलासी। सुहारी सिंध जे मलूक मिटीअ ते रहंदड़ तमाम मौज़िस ॿुधंदड़नि खे लाखीणे लतीफ़ जी ॿोली, महिराण जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सुहिणा सलाम। ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सॼी टीम जा कुर्ब क़बूल पवनि। मौज़िस सामईन, अव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अवां खुशबाश आहियो, अवां ठीक ठाक आहियो, अवां चाक चङा भला ऐं मतारा जोड़ आहियो। असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवनि में अंब हुजो ऐं कॾहिं बि अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अव्हां जे लुड़कनि जो ॾुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार हुजे। शाल अव्हां खे कोसो वा न लॻे, शाल अव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। जुग जुग जीओ, मुरकंदा महकंदा ऐं गुलनि जी आंटड़ंदा रहो। मौज़े सामईन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। हिक ई वक़्त मां ॿुधो पिया GFM मीरपुर ख़ास, GFM सखर, GFM लाड़काणो, GFM मेहरापुर, GFM मोरो, GFM सकरंड, GFM मटियारी ऐं GFM मातली जो गॾियल आवाज़ हाज़िर आहे अव्हां जो मनपसंद ऐं मालूमाती शो सिंध ॾींहं जी शाम। सिंध ॾींहं RJ यूनुस बकारीअ जो सलाम। जी मज़े सामाइन, यकीन तव्हां हूंदव खुशबाश ऐं हशाश बशाश ऐं असां जूं हमेशह अव्हां जे लाइ दुआऊं ऐं दुआउनि जा झोल भरे असीं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। अॼो के शो में जेकॾहिं अव्हां शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था। लिखणो आहे MTI, उन खां पोइ थोरो स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 888 ऐं 1 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। शुरूअ में MTI लिखण न विसारजो, छो त अव्हांजा मैसेज पहुचंदा, ज़रूर शामिल कंदासीं। GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ध्यान सां, गौर सां, प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ अव्हां जूं महिरबानियूं ऐं अव्हां जा वॾा वड़। किथे था चऊं पिया ओ साईं अव्हां खे त तारा तरीअ ते रखी ॾियो सां। किथे था चऊं पिया ओ साईं अव्हां खे त तारा तरीअ ते रखी ॾियो असांखे। रुगो इहो ई था घुरूं अव्हां खां त अव्हीं बि जीओ ऐं जीअण ॾियो असांखे।

जी एफ एम में प्रकाश, जी एफ एम लाड़काणू, जी एफ एम सखर, जी एफ एम मातली, जी एफ एम मटियारी, जी एफ एम मेहरापुर, जी एफ एम सकरंड, जी एफ एम मोर अवांजी खिदमत में शो है। सिंधड़ीअ जी शाम, सिंधड़ीअ जी शाम शो में यूनिसेक भरियो सलाम जी मौज सामाइन, यकीनन साज़ ऐं आवाज़ साथ रो साथ आहे अवां जे मोहबतुनि भरे साथ ते। असीं अवां जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं, लख जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं अवां जे ॿुधण ऐं मोहबतूं मोकिलण ते असीं अवां जा थोराइता आहियूं। तमामु तमामु घणियूं महिरबानियूं, लख थोरा। ओ जनाब, शामिल करे वठंदासीं अवां जा प्यारा प्यारा मैसेजिस जेके अवां असांखे मोकिलियो पिया, ऐं अवां जनि मैसेजनि खे यकीनन असां जीअ में जायूं ॾींदा आहियूं, ऐं सो ॾिसी था वठूं त केरु आहे महिरबानी जेको असांखे करे थो यादि ऐं मोकिले थो मैसेजिस। त पोइ मैसेज तव्हांजा जेके अची चुका आहिनि उहे शामिल करे वठूं। जी हा जनाब, कुझु मैसेजिस जेके आहिनि उहे स्क्रीन ते अची चुका आहिनि। असांखे हाफ़िज़ अब्दुल जबार सुमरो साहिब पाटार खां ॿुधे पियो, हाफ़िज़ मोहम्मद हारून सुमरो अवांजो तमामु घणियूं महिरबानी। ख़ालिद नोतकाणी साहिब असांखे मातली शहर खां ॿुधे थो, मिठा माण्हू किरोड़े कुरबा वहां जा। स्टाक लाशारी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे, ऐं अवां सां बाबू लाशारी गॾिजी ॿुधे पियो, जामोट फार्म खां, रीचल खां तमामु घणी महिरबानी। वॾा वॾा वहां जा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असद अली असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी हा जनाब, असद अली साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे, ऐं अवां असांखे ॿुधो पिया। जी जनाब, थैंक यू जी जो अवां असांखे ॿुधो पिया ऐं गॾो गॾु तव्हां हिकिड़ो मैसेज मोकिलियो आहे, तमामु घणियूं महिरबानी। थैंक यू असद नोतकाणी साहब ऐं रियाज़ अहमद निज़ामाणी साहब, अवां जा वॾा वॾा अवां गॾिजी असांखे ॿुधो था, ऐं असीं अवां जे इन्हनि कुर्बन, इन्हनि मोहबतुनि जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार ऐं थोराइता आहियूं। जी जनाब, भूरा राम असांखे ॿुधे थो ऐं विशाल ॿुधी रहियो आहे, तमामु घणी महिरबानी। ऐं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे, असांखे मैसेज मोकिलियो आहे, असीं अवां जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। कुर्बत दोस्तानो, भेनरो ऐं भाइरो, यकीन पहिरीं कलाक में असीं अवां जा मैसेज शामिल कंदासीं, ऐं जेको ॿियो कलाकु हूंदो उन में असीं अवां जा शामिल कंदासीं। जी हा, उन जूं कॉलूं शामिल कंदासीं, पर हींअर बिल्कुलु कॉल शामिल न कंदासीं। कॉल जेका तव्हांजी हूंदी उहा शामिल थींदी इनशाला, इनशाला, यानी ठीकु 6 वॻे खां पोइ। ऐं असांखे ज्वाइन कयो आहे नज़ीर मंगरियो साहिब, तमामु घणी महिरबानी नज़ीर मंगरियो साहिब, वॾा वॾा अवां जा तव्हां असांखे रोहड़ी सखर ऐं उतां खां ज्वाइन कंदा आहियो, ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया। थैंक यू वेरी मच, अगेन मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां रोज़ वारे शो आयो ऐं असीं तव्हांजी मोहबत जा कर्ज़ी थियासीं। ॻोठ गुल बाग खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबत अली मलाह साहब, अवां जो तमामु घणी महिरबानी मोहबत अली मलाह, ऐं अवां सां शामिल थी चुका आहिनि जी जनाब मोहम्मद अली मलाह ऐं अब्बास अली ऐं आबिद हुसैन मलाह, वॾा वॾा अवां जा। अवां सां शाहिद मलाह बि गॾिजी ॿुधे थो, किरणे कुर्ब मिठा माण्हू, ऐं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं ऐं अनेक अहसान तव्हांजा। जी जनाब, असांखे ज्वाइन कयो आहे

सनोबर मटियारी खां ज्वाइन कयो आहे शो पसंदि करण लाइ महिरबानी. लखथौर तव्हां लिखियो आहे त असांखे शमन ॿुधाइजो. शमन मीराली ज़रूरु शो में शामिल हूंदो आहे. तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी. वेलकम चवंदासीं सनोबर तव्हांखे. ऐं रोहिड़ी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद सुलेमान ऐं अब्दुल हमीद. तमामु घणी महिरबानी. अब्दुल सतार शेख बि असांखे ॿुधे पियो. तव्हांजूं महिरबानी. ऐं गोढा जी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां कुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो. किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू ऐं झलूरी खां ख़ालिक लाशारी ॿुधे थो. सुहिणा साईं अवां जूं मोहबतूं थैंक यू. ऐं ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो. अवां जूं महिरबानी. महबूब नाज़ जलालाणी ऐं मुख़्तियार नाज़ जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी, अवां जूं तमामु घणी महिरबानी. मोहबतूं जो अवां बि असांखे कयो आहे ज्वाइन. थैंक यू. ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो. किरोड़े कुर्ब तव्हांजा सुहिणा साईं. मोहबतूं ओके जनाब. डॉक्टर ट्रैक ऐं नगमा नाज़ जो आवाज़ ऐं गॾिजी ॿुधूं था. हिकिड़े ब्रेक खां पोइ वापसि मिलंदासीं, पर कमर्शियल ब्रेक हूंदो, हुन खां पोइ मिलंदासीं. केॾा नवनि जो प्रोग्राम आहे जारी ओसारी. नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनिस बकारी. बसि गॾु हूंदासीं.

जी जनाब, कमर्शियल ब्रेक ना वधी रहा आयो। महफूज शाह असके बुधे पे सीनियर सहाफी बदीन का भली कर। महफूज शाह गुलाम रहीम बलोच मिठी थरपारकर झुड़बी का बुधे पे थैंक यू।

0: ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: महिरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बाहिर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो महिरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
4: अदा, नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
1: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं शहनाज़ गुल बलोच वेलकम थैंक यू जो अवां असांखे यादि कयो ऐं थरपारकर खां असांखे नोहटो खां ज्वाइन कयो आहे जी हा रामचंद कुमार कोहली ॿुधे थो गोविंद कुमार कोहली ॿुधे पियो ऐं कमलेश कुमार कोहली ॿुधे पियो अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानी थैंक यू अगेन थैंक यू लुटको मोरी सांगड़ खां अब्दुरहमान लगारी मैसेज कयो ऐं मिठा खां लगारी यादि कयो आहे तालिब हुसैन लगारी ॿुधे पियो मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब तव्हां जा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तमामु घणी महिरबानी हुजो तव्हां असांखे यादि कयो ऐं मैसेज मोकिलियो आहे थैंक यू भली कार चवंदासीं अव्हांखे कुट सरफराज़ राजड़ खां असांखे मैसेज खिपरो खां मोकिलियो आहे सुमार भील दिलीप कुमार भील अवां जूं महिरबानी ऐं अब्दुरहीम बजीर ॿुधे पियो अव्हां जूं वॾियूं महिरबानी थैंक यू आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार ॿुधी रहियो आहे अव्हां जूं बि तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं अव्हांखे बि चवंदासीं भली कार ऐं ॻोठ जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी आकिब ऐं अज़हर लगारी ॿुधनि था थैंक यू वेरी मच सुहिणा साईं मोहबतूं अव्हां जूं ऐं सजण सांगीअ जी वांडम गुलाब गुल असांखे ज्वाइन कयो आहे मिठी थरपारकर खां थैंक यू शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा ऐं जो अव्हां असांखे यादि कयो वॾा वॾा पाबो वेरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाड़ नोवल राय मेघवाड़ दानिश कुमार मेघवाड़ सूरज गुल मेघवाड़ शंकर मेघवाड़ ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब अव्हां जा सोणा साईं शाद हुजो आबाद हुजो तमामु घणियूं महिरबानी ऐं खबड़ी भिट खां असांखे तालके सालेपट खां ज्वाइन कयो इरफान अली थेबे इरफान थेबा भलीकार

नज़ीर अहमद मंगरियो साहब रोहिड़ी सखर का बुधन पे तमाम घणी महरबानी तव लिख तो उस्ताद मिठू कच्छी बुधाई जो कोशिश कबी सुना साई बिल्कुल कोशिश कदी बुधाई ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क हलूं था साज ए आवाज ए साथ में एक ट्रैक कर शमन मीराली जी सदा हवाउन में गूंजे थी अवां बुध पिया GFM 88 सखर GFM लाड़काणू GFM मीरपुर खास GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंट GFM मटियारी GFM मातली जो गड़ियल आवाज शो है सिंधड़ी जी शाम इन लम्हात में अवसा गद यूनिस बकारी यो सलाम।

जी जनाब घोटकी का गुलशेर मंगरियो साहब चाहे तो अदा यूनस अस्सलाम वालेकुम आई तहां जो हाल छा है मां जो हाल ठीक है ता खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ ए ता मुझे आवाज अंदाज शो के पसंद कयो है किरोड़े कुर्ब में ठा मानो अवा घोटकी का सके ज्वाइन कयो है तमाम तमाम घणी मेहरबानी भा गुलशेर मंगरियो साहब जुग जुग जी।

ऐं नोटो खां असांखे नंढड़ी रवीना कुमारी ॿुधे थी, कमलेश कुमार, रजीना कुमारी, रामचंद कुमार भलीकार।

सिराज खास के लिए सके ज्वाइन किया है गुड आज ही सहतो का आज ही सहतो बुधे पे भलीकार तमा लिखे हुआ है तो शानवास खास के लिए सलाम वालेकुम असलाम थैंक यू वेरी मच भलीकार मोहब्बती है मिठा मानो मोहब्बतू बदीन का बखर सीराणी का सखर कींझर का कारूंझर है केटी बंदर का कश्मोर ताई मेरपुर खास का मोरो ताई जिन जिन इलाइकन वाहिणन वस्तियन बस्तियन में असी बुधू या बुधा प्या वनो अवी बुधो प्या तां सबनी के भलीकार।

गुड हा जी सहतो खां असांखे ॿुधी रहिया आहिनि सरोज खासकेली, शहबाज खासकेली ऐं साले सोलंगी भलीकार, ताज मोहम्मद सहतो अवां जूं मोहबतूं ऐं आसिफ सहतो अवां जूं तमामु घणी महिरबानी, थैंक यू असद सहतो ऐं हाजी सहतो साहिब तव्हांजूं तमामु घणियूं मोहबतूं, भलीकार भलीकार।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहराबपुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: घणो आहे, डॉक्टर ताईं नथो पहुची सघे। तव्हांजे जेको आहे सो हथ में अरंडी जेके असां किस्ट रॉयल चवंदा आहियूं उहा बासानी मिली वेंदी आहे, उहा इस्तेमालु करे सघो था। सिर्फ़ राति जे टाइम में चार चमचा जेको आहे सो खीर में विझी, नीम गरम खीर में विझी इस्तेमालु करण सां तव्हांजी कब्ज़ टुटी सघे थी। आख़िर में ॿ चमचा विझी ऐं उहा तव्हांजी कब्ज़ बि जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदी। ऐं हू बि नेराणे जेको आहे सो असांखे टे चार गिलास पाणी जा ज़रूर जेको आहे सो पीअणा आहिनि। निंड पंहिंजी टाइम ते किरणी आहे। पाणी जेकॾहिं नीम गरम आहे अञा वधीक जेको आहे सो हवा खे फ़ाइदो पवंदो, छो जो इहे हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां खे केरु ॿियो न ॿुधाईंदो आहे। हिन प्रोग्राम जी तवसुस सां सिहत जी ॻाल्हि जेकी FM 94 मेहरापुर में जेको आहे सो मौजूदु आहे, उन जी तवसुस सां असां पंहिंजे सामाइन ताईं ॿुधणनि ताईं इहे जेको आहे सो ॼाण पहुचाईंदा आहियूं। अलहमदिल्ला इहा ॼाण ॿुधी खोड़ सारा दोस्त असांजा मुस्तफ़ीद थींदा आहिनि ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांखे फीडबैक मिलंदो आहे तव्हां जी असां इहे ॿुधायल शइ इस्तेमालु कईसीं ऐं असांखे हिन मां काफ़ी सारो लाभ हासिल थियो आहे। सो अहिड़े तरीक़े सां अॼोको प्रोग्राम बि इन ई हवाले सां हुयो त तव्हां खे हीअ शयूं ॿुधाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त तव्हां हीअ शयूं ॿुधी करे ऐं दवाउनि जे तरफ़ घटि वञो ऐं कुदरती शयुनि जे तरफ़ ज़्यादा अचो। होम्योपैथिक जी दवाउनि में बि कुदरती शयूं पियल हूंदियूं आहिनि, इन जे करे तव्हांखे असां होम्योपैथिक जो ॾिसंदा आहियूं त होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। वॾी महिरबानी,
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिब, मां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं FM 94 जे स्टूडियो मां अवां ताईं पहुचायो पियो वञे। उहो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्तानी अवां सां गॾु आहे। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिब असांजे स्टूडियो में मौजूद, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह। डॉक्टर साहिब, सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर, हिकु मुल्की सतह डॉक्टर, बल्कि पाकिस्तान जो वॾो डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूद आहे। डॉक्टर साहिब जी ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था। काल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: सलाम साईं। साईं
2: मुंहिंजा
1: केरु साहिब थो ॻाल्हाए? वरियामली साहिब, छा पुछंदा डॉक्टर साहिब सां?
2: साईं मुंहिंजो छोकिरो आहे तकरीबन 14 सालनि जो आहे, हिनखे पेट में सूर थो पवे।
1: जी
2: हलो।
1: जी जी, अॼु आवाज़ अचे पियो।
2: साईं पेट में सूर थो पवे, हुनखे जेको खाधो खाए थो कढी थो छॾे।
1: अच्छा, पेट में सूर थो, माना जेको खाए थो कॾहिं थो करे, मादे जी अल्सर हूंदी या अहिड़ी जेको खाए थो उल्टी कंदो हूंदो, रत जी उल्टी जेका थी अचे न, बाक़ी खाली माना उल्टी थी अचे,
2: खाधो
1: खाधो नथो वणे, मादे जो मसालो अथसि। डॉक्टर साहिब, तव्हांजो इलाज मौजूदु आहे, तव्हां भले सुभाणे ई हिनखे वठी अचो, को मसलो कोन्हे, को अलाह सां ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे, रूबरू ॾेखारे वञो, बराबरि इलाज कराईंदो, इनशाला सही थी वेंदो, को मसलो ई कोन्हे को वधीक। असां ॿुधो, डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर,
0: जी साईं, बिल्कुल दोस्त खे ॿुधाईंदासीं त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि करियमि त अर्के सौंफ़, जेके अर्क सौंफ़ आहिनि उहे ऐं जीरो अधु चमची राजो पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो नेराणे उहो काढ़े उहो पाणी पहिरियों, इनशाला ताला हुन सां जेके बि पेट जा अमराज़ आहिनि ख़तमु थी वेंदा आहिनि। या पेपरमिंट शरबत मिलंदो आहे, तव्हां उहो वठी बासानी पहिरे सघो था। फूदने जी टिकियूं चूसराए सघो था, काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदा आहिनि। जेकॾहिं इहे तव्हां इस्तेमालु नथा कराए सघो त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारियो, तव्हांखे इनशाला ताला नंढे खे मुकमल तरीक़े सां ट्रीटमेंट ॾींदासीं, इनशाला ताला नंढो ठीकु थी वेंदो।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी अवां सां गॾु आहे। असांजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिब। डॉक्टर साहिब जी ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301 9196 851 प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, ॾिसो किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो। काफ़ी दोस्तनि जूं कॉलूं अचनि पियूं, सभिनी खे ख़ुशि आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: साईं मुंहिंजा केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? जी मुंहिंजा भाउ, छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां? ॾाठ में सूर पियो आहे, ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर,
0: जी जेकर तकलीफ़ ज़्यादा आहे त क़रीबी डॉक्टर खे ॾेखारे सघो था, वरना रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर रहंदो आहे। या लौंग जो तेल तव्हांखे मिली वञे त उहो जेको असां लॻाए सघो था, हुन सां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। या घर में मिठी सोडा हूंदी आहे उहा लॻायो, इनशाला ताला हुन सां बि
1: काफ़ी। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केरु ॻाल्हाए पियो? केरु साहिब पियो ॻाल्हाए?
2: सर साहिब पियो ॻाल्हायां।
1: सर साहिब पियो ॻाल्हाए? सर साहिब

साहब यो छा पुछने डॉक्टर साहब का जिसम में कमजोरी इन मसले लाइ फोन करी इलाज मौजूद हलो डॉक्टर वो मसलो ही को एफ एम बुध डॉक्टर बुधाई जी सर

0: ॾियण खां पोइ हुन मां हथु कढो, अधु छॾे ॾींदी दवा वठी आया हूंदो, थोरो फ़र्क़ु पियो हूंदो, तव्हां दवा बंदि करे छॾी हूंदी।
1: बिल्कुल सही पिया चयोसीं, बिल्कुल ईअं ई थींदो आहे। असां हालांकि पेशंट्स खे चवंदा आहियूं त बाबा हीउ हिकु दफ़ो दवा ॾिनी आहे, हीउ कांग्रेसी दवा न आहे जो तव्हांखे जेको आहे सो फ़िलहालु छॾे वञे वरी पई थिए। हिन खे जेकॾहिं तव्हां मुकमल तरीक़े सां इस्तेमालु कंदव त तव्हांजी तकलीफ़ मां जल्द छुटी वेंदी आहे। अॼु बि हिकिड़ो ताज़ा मिसाल आहे त हिकिड़ो पेशंट हुयो जेके ॾेढ साल खां बाद में मूं वटि आयो, नंढी खे वठी आयो। अलहमदिल्ला हिकड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे त हुनखे त जेको आहे हिकड़ी चकर सां फ़र्क़ु जो पइजी वियो त उहो वीचारो मज़दूरी कंदो आहे, कराची वेंदो आहे, पर नंढड़ी खे वरी अॼु वठी आयो त हुनखे हाणे एतिरे टाइम खां बाद में वरी मथे में जेको आहे सो मलो। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जी जेकी पेशंट कहिड़ो बि हुजे उनखे तकरीबन जेको असां चवंदा आहियूं त ॿ टे महीना मुकमल कोर्स करायो, त उनजो मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त फ़िलहालु ॾहनि ॾींहनि जी दवा ॾींदा आहियूं त हुनखे मुकमल तरीक़े सां बि हुन ते घटि में घटि एटलीस्ट हिकिड़ो महीनो दवा कंटिन्यू हलाए त हुनखे काफ़ी जेको आहे
0: फ़र्क़ु,
1: छो जो हीउ सिर्फ़ चमड़ी में ॿाहिरि न हूंदी आहे, रत जो बिगाड़ हूंदो आहे, रत में अंदरि सफ़ाई करणी हूंदी आहे त हुनजी दवा मुकमल जॾहिं हलंदी तॾहिं ई फ़र्क़ु थींदो आहे। जी साईं,
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम अलैकुम।
2: हेलो
0: वालेकुम सलाम। जी हाकिम तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तनि घर में असीं गुज़ारिश कंदा आहियूं भाई जॾहिं बि तव्हां कॉल करियो त रेडियो सेट खे बंदि रखो, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो आवाज़ पाण ॿुधणु चाहींदो त पोइ तव्हांजो आवाज़ असां वटि त कोन ईंदो, मजबूर असांखे या कॉल ड्रॉप करणी पवंदी या ख़ुदि ई कटिजी वेंदी। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, ॾिसो हीउ कॉलर किथां जो असां सां गॾु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हा जी, छा पुछणु चाहींदा कुंदर जो सूर आहे न, पेर खां वठी वेंदो। हा ॿुधो, ॿुधो करापर इलाज करायो, डॉक्टर साहिब वटि इलाज मौजूदु हलिया अचो, अलाह सां जवाब शिफ़ा ॾियण वारी आहे। वधीक ॿुधो
1: बिल्कुलु, जॾहिं रग ब्लॉक थी वेंदी आहे त पोइ इन जे करे ई जेको आहे प्रॉब्लम थींदो आहे। उन जे लाइ बहितरीन दवाऊं होम्योपैथिक में मौजूदु आहिनि ऐं मुकमल कोर्स मौजूदु आहे। फर्स्ट एड तौर ते त तव्हां का बि मालिश कंदव ऐं घणा दोस्त मां मालिश जे लाइ बि हालांकि मना कंदो आहियां, घणा मालिश कंदा आहिनि। सो हाणे बि काफ़ी पेशंट्स आहिनि त असां मालिश कयसीं, उन में वधीक सोज वधी वई ऐं वधीक तकलीफ़ वधी आहे। हालांकि असां बार बार चवंदा आहियूं त इनखे मालिश न आहे करणी, वध में वधि असां ॾसियल हिकिड़ो जीअं कुदरती तौर ते असां तेल ॿुधाईंदा आहियूं त सरहं जो तेल आहे, उनखे गरम करे उन में हेठि विझी ऐं उहो तव्हां सिर्फ़ अप्लाई कयो, यानी अप्लाई करण जो मक़सदु इहो सिर्फ़ तव्हां लॻाए छॾियो। जॾहिं उहो अंदरि चमड़ी में जज़्ब थी वेंदो त रगुनि में ऐं हॾनि में पाणी उहो पंहिंजी ताक़त रखंदो त उन सां ख़ुदि बि ख़ुदि जेको आहे सो तव्हांखे रिलीफ़ मिली वेंदो आहे। पर उहो बि ॾिसो फर्स्ट एड तौर ते यानी आरज़ी तौर ते फ़िलहालु तव्हांजी तकलीफ़ खे घटाए सघे थो, लेकिन मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ मुकमल दवा होम्योपैथिक में तव्हां इस्तेमालु कंदो तॾहिं तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो।
0: ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, मुंहिंजी अमा घुराड़ी आहे, हुनजी उमिरि 70 साल थी वई।
0: जी जी,
2: मूंखे मोशन करण ॾाढा।
0: अच्छा, मोशन नथा बीहूं छा?
2: सर, ब्लड प्रेशर हाई थो रहे।
0: अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई थो रहे, त हीउ असुल छा आहे त अमर एजड आहे, बहितर आहे त रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे, बाक़ी असां ॿुधो ॿुधाईंदो।
1: जी साईं, बिल्कुलु मूंखे बि इहो ॾिसंदासीं त जेको आहे सो बिल्कुलु हिकु त चांहि ऐं खीर ऐं मानी हुनजी बिल्कुलु बंदि करणी आहे, सिर्फ़ खिचड़ी इस्तेमालु करणी आहे, केलो इस्तेमालु करणो आहे, केले में स्पंगुर जी दुही विझी उहा इस्तेमालु करणी आहे, जीरो अवां हुनखे फकराए सघो था, चिमची खनि उन खां पोइ हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसराएसि, उन सां बि काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे, वरना दवा मौजूदु हूंदी आहे। जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे थो हिन अमल सां ठीकु आहे, वरना उहो बोरो ॾेखारे सघूं, लेकिन परहेज़ बि मस्ट आहे, यानी चांहि खीर वग़ैरह अव्हांखे मुकमल बंदि करणो आहे। ओके,
0: प्रोग्राम हिसे जी ॻाल्हि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।

0: केपी में समूरा कदम आईन मौजिब खया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा नाहे। हाणे केपी हुकूमत में दहशतगर्दनि जो को बि हमदर्द नाहे। वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तारण चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिक ई मुल्क में ॿ पॉलिसियूं कीअं हली सघनि थियूं। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त केपी में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में गणतीअ जोगी बात थी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सदर आईन तहत एमरजेंसी लॻाई।
1: के साथ भी यहां बैठ रहा हूं और फिर हमने 18-19 अक्टूबर को मरकजी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है। आइंदा कल है हमारे
2: हुकूमत ने हमेशा आपको जो है मायूस किया।
1: बाबा ये उनसे पूछे, मेरे साथ जो कमिटमेंट पीजीआई ने की थी वो बरकरार रही। देखो किया तो गवर्नमेंट कोई हल नहीं। मगर साहब की आवादात की जम हो सकती है लेकिन आवाम के आईन
3: जे यू ए सरबराह मौलाना फजल रहमान जे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचरज़ई ऐं राजा नासिर अब्बास सां मुलाकात। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबात पैदा थियल सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मौलाना फजल रहमान चयो आहे त पार्लियामेंट मां इस्तीफ़ाऊं न ॾिनियूं पई थियूं।
0: हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर अपोजिशन लीडर खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त क़ौमी असेंबली जो स्पीकर हुकूमत ऐं अपोजिशन लाइ बराबर ऐं अणधुरियो आहे। अपोजिशन लीडर स्पीकर चेंबर में अची ऐं ॻाल्हियूं करे महमूद ख़ान अचकज़ई खे स्पीकर चेंबर में ज़रूर अचणु घुर्जे।
4: एक सौ अस्सी दिन का मतलब 180 दिन से पहले पहले 30 डेज में मैं आपके पास आऊंगा, 60 डेज में भी आपके पास आऊंगा। परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके इससे अच्छे आएंगे। इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। ये ऐसा नहीं है कि जी एक सेटअप आ गया है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो बेटर रहेगा। कुंडली साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है।
3: फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कर तो तब्दील थी वो नाकामी की का भी गुंजाइश ना है, रुगो कामयाबी घुर्बल है। सेनेटर फैसल वावडा केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी खे वार्निंग ॾींदे चयो आहे त फैसल करीम कुंडी जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वठंदो रहंदुसि।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
8: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी। पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी। अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा?
11: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
9: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
12: 03013992836।
13: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

سندھ آئے سندھن تے سر ضمیر مسافر جی جلسہ

0: नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: हेलो कई अता तो खे रब मसीहाई पर कुतो दंगवा तो खा खसालत में
1: हेलो हेलो दोस्त हेलो

0: सब्सक्राइब टू शब्द अली कांधड़ो
1: ओ करु छले बिहं दुसी मात हिजो करु छले बिहं दुसी मात हिजो ओ

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह दहे का शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर ता वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो। राबते लए 0301-96-8851।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम।

0: 180 दिन का मतलब 180 दिन से पहले पहले 30 डेज में मैं आपके पास आऊंगा, 60 डेज में भी आपके पास आऊंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके इससे अच्छे आएंगे, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखेगी। ऐसा नहीं कि जी एक सेटअप आ गया है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बैठा रहेगा। कुंडली साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यहां पे फेलियर की गुंजाइश 1% भी नहीं है। बार बार तब भी कर रहा हूं कुंडली साहब को, जमीना को, जहां हमारी दोस्ती है, जहां हमारी सपोर्ट है, वहां से बहुत क्वेश्चनिंग होगी। आपसे शायद इतनी क्वेश्चनिंग होगी जो इलेक्टेड से नहीं हुई, क्योंकि अब आपका जो बेड़ा है उसमें फेलियर इज नो ऑप्शन।
1: फैसल करीम कुंडी परफॉर्म न कयो तो तब्दील थी वेंदो, नाकामी जी का भी गुंजाइश मौजूद ना है, रुगो कामयाबी घुर्बल है। सेनेटर फैसल वावडा जी केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी के वार्निंग डींदे चयो है तो फैसल करीम कुंडी जी कारकर्दगी जो जायजो वठंदो रहंदस, नाकामी जो को भी जवाब न बुधंदस, पाकिस्तान खिलाफ गालाइंदड़न जा नस्ल तबाह करे छींदासी। 180 दिन घणा अहम आहिन, ये पार्ट 1 है, पार्ट 5 बे थी सके तो जमहूरियत के हलाने लाए बच्चा जमहूर आणो पवंदो, पाकिस्तान के रीवोट करण वारो ऑप्शन ॾिसी रहियो आहियां, अवाम हाणे नारन जे पुठियां फार न थींदो।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि क़ौमी ज़रई ऐं ग़िज़ाई तहफ़ुज़ वारी कौंसिल जो पहिरियों इजलास, शहबाज़ शरीफ पारां ज़रई शयुनि ऐं लाइव स्टॉक जी दरामद वधाइण लाइ घुर्बल क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म चयो त ज़रात मुल्की मईशत लाइ करंगी जी हॾी आहे, आर्यन खे फसल जी सही क़ीमत मिलण घुर्जे।
3: Iran is doing splendidly. They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far. But the Trump dividend, so...
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत के निशानो बणाइण लाइ हद पार करण जो

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्याब आई
2: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: रबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: नए और पुराने गाने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज प्रोडक्शंस।